0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
0: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
1: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
0: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे सेवा
1: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
0: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423359। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
2: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
3: कुटपीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
2: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
3: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
2: हिंसा अपने फैनाई करी। यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली

0: किल्निकाली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: बैंकले कभैले कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन। यदि कसैले कसै माध्यम बठियाईलाई तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई छग्दु खोज्जा छ। सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरू उनीहरू विवरण मागी भर बैंकमी सोधौं सतर्क रहौं ठगी बठिए बचौं।
2: सिद्धार्थ बैंक बठियाई जनहितमी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैभरिलाई।

0: ओए रजनी ओ वहां 62 नंबर लक्ष्मी बा दिखाओ तो रास्ता दिखाओ तो
1: मुर्गिन दाना देना जाला म काकर लक्ष्मी फादा दिए अब ना
0: एक तो तपा बाका मुर्गिन फार छे लक्ष्मी से डिरेले से बफाती आनो हारी छत्ता
1: तापन घिसकाई चलाई नी हुई थी नहीं तो अमन दत साकर बेन घर भीतर आई लागी कल से भगई दी
0: पारक भीतर पैट का मुर्गी मुआडी वफादी कई का भगाई खोज लखो का
1: आरम किरा फटिंगा मु साफ सिर निशा कर कई का फलाम का जारी लगा बात तप्पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे की बेन अपना न दाठी दूर रिना
0: हो बिना था का करना हो तप्पा देखती की डर नागर लग्न रही था देव तप्पा तो अपन घूम का बारी वोट कर गिनता
1: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं बोली मुकर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग साम दस ना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वा नी जिसके साप मने देख डरे था नी चलाख दूर रलसी साप नी दस्त तर मुकर खैना ख्वाज बाहर निस्क मेरा मत घास काट बेल ख्याल बेल ज्ञान बेल छू बेल से मने मही मारक लाग बाट कना समझ कर पट्टी रक्षा करना क्रम साप दस लाख रठ मने सापन देखती की मारक लाग रठ उसी को कर बेल फिर साप दस लाख रठ
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेट्दै था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं
6: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
7: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
6: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
7: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
8: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854 89213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

0: कापिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज था का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: था कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733

0: गोल कर्ती खेलमा लौट्न प्रयास कल तर खेलके 32 मिनटमा डिम्बोले गोल कर्ती ह्याट्रिक पूरा गर्थे फ्रान्समा 3-1 के गर्दा दिएल खेलके 50 मिनटमा नर्वेके एग्रन स्ट्रान्ड लार्सन पेनाल्टीमा गोल कर नै स्याकल वकर पाछा खेलकी दोस्रो हाफके अतिरिक्त समयमा फ्रान्सकी डिजायर डोए गोल करल पाछा फ्रान्सकी नर्वेकी उप 4-1 के जित निकल आशुलक समूहकी और खेलमा सेनेख इराक 5-0 गोल अन्तर्गतकै पराजित कति जित हासिल गर्नबाट यससँग समूह आईमा अमेरिकाकी 9 अंक बटुल सफे नर्वेकी 6 अंक बा उसँग सेनेगल 3 अंक जोडलक इराफे अंकविहीन रहति विश्वकपमा से बाहिरबाट यस समाचारसँग खोज खबर गरे जेनासे पहिले खबरकै मुख्य शीर्षक फेरि सेक्छु टिकापुर अस्पतालमा सञ्चाल मर्लक एआरटी सेन्टरमा सोही वर्ष 501 जना एचआईभी संक्रमित सियोले संक्रमितकै पोषणमा सघैनामा कार्की ठक्करमा से 2 बालिकाकी मृत्यु मनसुन कमजोर भएक नेपालमा वर्षा अवसर से कम पश्चिम नेपालमा मनसुन आफिन सक्रिय हुन् ओफिफा विश्वकप 2026 नर्वे हटाइटी फ्रान्स समूह आईकी विजेता लिटा बक्ला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद लिटिया बक्ला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदाई दू एक 12 बजे के खोज खबर सुन सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीका प्रश्न सुनती रवि राम राम
1: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ उच्च जीवनस्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो
2: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर बीसीए बीबीए बीई सिभिलका साथै एमबीए कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइसक्न हुन अनुरोध छ प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ
1: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर भेडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949
3: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान।
1: यही असार 20 गते तेस्रो शनिवार को दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
1: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 63 77 72।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएका ल बाटी
5: ए ले ले ठिके बा चल हाली भाटवट खाई हो जाएका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार।
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 9864 41 208 और 9846 39 261।

0: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस,
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602204।
7: ऐ विवेक, उठ्याङ खास झपासोर चिन्छ हो?
8: ऐ दाइ मर्गिनु मर्गिनु।
7: ऐ सङ्गरियन, एक घडी फुटबल बन्द गर त। विवेक खन उहाँ कहाँ हुइदन? उहाँ झप्स्यारो ना जाऊ कहटन हुँ।
9: ओ हेरो त उहाँ सब भागल पादल कि का हो? विवेक खन एक घडी स्कुले फुटबल ह्याराइ लग त झन का जता पो आपनन।
8: देवाली मेन त सप काटल मुना मुना।
7: विवेक जिना क्या सङ्घारू, देव साँझ पक्का झुर्नी चल्क बैठ। हाम्रा तुहान स्वास्थ्य केन्द्र पुगैदी। ऐ पारस, तू घर दाबु हन मोटरसाइकल ले खाएको
9: हो
7: त?
9: हो विवेक हन, यहाँ खुल्ला ठाउँमा सुताए झुल झल्याङ झुलुङ निकरा खन मुहारी काँटीले ओहि हन हौडी हेटु फिल्लीमा काट्ला खल सोइटी बा काटल ठाउँमा न छो चलाइ निहुड न।
7: अब मै विवेक खन सजिल हुना कै खौ वाकर कसके पेटी ता धीरे धीरे खोल ढेटु ओ घरी वो मुन्द्री फेक खाद दे हम
9: बिठारो छन। मै यह बेला विवेक का जुट्टा वो मजा धीरे धीरे निकाल दे।
7: झूठ जसिन सापन का दसाई खतरनाक नी रह। समय में जो उपचार कराई से क्लसे दिखा सपन का कातल मन यहाना फे बचाई से जिठा सपवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई से क्लसे वही हना भारी क्षति बिना से जोगाई से जिठा।
10: विश्वास लग्नाओ सही जानकारी पाइक लाग लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए छ जिठा।
11: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: का होइल बाबू अपने कलकलाइत रही अपने का करे कलकलाइत रही ले यू भुइया में के हो का करे भुइया में धनवा नाइल बाटी
1: सुनिना दादू हमरा दुनू जना बना में घास काटा रहल रही मर संग हम सब पका द नीना दादू हाल का करना होई एही न सत्य हो पुकार के नो पुकार पहले से मिले रहा
0: ओहो ऐसिन बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई डाकू अपने नहीं आते हैं ना संघरिया ध्यान दी हेलो मुकेश तू जत ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाऊ पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जत ही आओ हाँ सबकू काम छोड़
2: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू
0: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन वाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकले से अपने वो सवारी चालक के बीच में सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुराई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डालते हैं अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
1: गुण लगा दे दादू जाए
3: याद करी 7-10 से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकले से सांप डस लक मने बचाई सक दी था वो इन्हीं में से हुई ना मृत्यु दर भी कम कर सक दी था सांप डस लक मने है ना झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले वो मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैथ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: भ्रष्टाचार करो या मनन खुलके विरोध करी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी अप्यार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस टीन गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कही एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
3: आज तिमी मेरो वरिपरी किन घुम्दैछौ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छड्के तिलहरी बाला चूरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसन का गरगनारों पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो।
1: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या।
0: यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
5: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28। आइ हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
6: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
2: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना, अट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुहाका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टफे पटानी हुइन कि गुङ्गुवा बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका, द्वार, पार्टीशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो, घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषतः हुलक मौका, द्वार, पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार, टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।
9: तिमी त अब सहर जान्छौ रे, मलाई बिर्सिन्छौ होला है?
10: कहाँ बिर्सिन्छु र कुसुम।

0: सापन र कटाई से विषेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध आम संचार अन्तरक्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश।
1: नमस्कार, सर्पदंश से भुइसेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरूद्ध जनचेतना जगिन उद्देश्य लिएका अन्तरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा आफ्नो स्वागत बा मै पुष्पा
2: ओ मै एकज आज कार्यक्रमको तीसरा पैठा आज हाम्रो सप्प दशक हुने यहाँ तत्काल गर्भपातमा प्राथमिक उपचारको विषयमा संवाद गर्ने बाँकी
1: सप्प दशक मन यहाँ का कर शान्त ठहर पर्खा ओ सप्प दशक मन यहाँ खुना चिज खुवाई गुठा कि निभुई कना विषयमा हमन सर्पदंश विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य जानकारी दिने बाट
3: सर्प दसैँको छ र त्यो विष छोडेको छ सर्पले भनेदेखि चाहिँ मान्छे चल्मा लायो हिँड्यो भनेदेखि त्यो टोकेको ठाउँबाट विष छिटो भन्दा छिटो रक्त संचारमा फैलिएर बिरामीको ब्रेनसम्म पुग्छ र बिरामीलाई विषको असर छिटो पुग्छ।
2: सात दशलक बिरामी आउन तत्काल गर्भपातमा प्राथमिक उपचार वो सर्पदंश उपचार केन्द्रसम्म कसरी लैजिन कना विषयमा जानकारी दिएका बिन्दु हो होम कुमार अकबरको टिस्टा बजार फेस सुनबी
4: महिता एकदम डर लागत बिन्दु सुखराम जिन्दरावका कुछ निमितुहीन तान पक बैठी त ओ सप्पा कटलक ठाउँमा ना चलाऊ ओ ना हिलाऊ बैसेक था
5: बैठा
6: आप हाम्रा तुहिन सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लैजैबी अनि त ठिक हो जाइ नि
1: हतोत्साहित ना हुई धिउर पेर जिनकरी धिउर जसिन साप विषाहा निरत धिउर जसिन सापनकर दसाई खतरनाक निरहट अमन कनाह कनसे हानिकारक विषाहा साप फे मनै दसलक खण्डमा प्राय आपन बीस दशलक ठाउँमा निपठैत
2: नाप्ताई सात दशलक मुनेयान शान्त धरी बातचित कैखन सर्पदंशक बिरम्यान चिन्ता वा तनावन कम कर मदत गरी सर्पदंशक बिरम्या अक्टासन ढिउ स्वास्थ्य समस्या होइन ओ हृदय रात समेत विषेक्न उल्लेख कोर्से बिरम्यान परामर्श देख शान्त धर पठा बिरम्यान सहजिल से सुटाख सप्प दशलक भाग चलाए वा हिलाए जिन्दी सप्प दशलक भाग स्वयं रहेछ ठाक सप्प दशलक ठाउँमा टम्म कस्किल लुगा गहना मुन्द्री घडी असिबा कलसे तुन्ट झिक्ख घोकला गुनादी
1: बर्खा छ्याक अर्थात साप बहार निस्कन समयमा आपन घर आन्जर पान्जर सर सफाई करबेर सर्पदंश से बच सेक्दै था आपन घर आन्जर पान्जर रलक ख्याङ घाँस कटना फोहोर मैला व्यवस्थापनकै ख सापनक दसैँमा से बाँच सेक्दै था याद गरी साप अस्तै ठ्याङ घाँस फोहोर मैला हुइलक ठाउँ तथा आहार खोजीमा अनाज धरलक ठाउँमा नुक्क बैठल रहेछ ठ
2: समयमा चाहिँ उपचार गर्नेलेसे विखासान दसलेसे फे मनेनक ज्यान बचाए सिक्जिठा सापनक दसाई से प्रभावित मने झट्ट से झट्ट लगक सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लैजा डारी यहीले ऊ मने जीवन बचिनामा भारी मदत गर्था
1: आप भरम्र सर्पदंशक बिरभेन तत्काल करपना प्राथमिक उपचारको विषयमा कुछ श्रोता सहभागी होकर विचार सुनी सापक डसल मनैया ओ वाकर परिवार हाम्रो कसिन व्यवहार गर पर्था ओ का कर कैख हाम्रो कुछ श्रोता सहभागी होकन पुछल बाटी
7: अम्बौटी ठारो हो कुछ सुनाई भई बढ़िया से लै जाओ औषधि कराओ सन्चो हो जाए के व्यवहार सिखाई पड़ल समझाई पड़ल ठीक टाइम में हॉस्पिटल पुर्याय पड़ल साफ काटल मने के
8: माया रानी ठारू समझाए परी चिंता नहीं करे अब उगरे तो दुखी रही ही जैसे कि कटी सपोर्ट तो दुखी तो रही तो दुखी से अब समझेबो बढ़िया से कि चिंता नहीं करे जैसे कटले बस अपुआ तो दवाई बिरो बढ़िया से कराओ दवाई कराई के ले जाओ अस्पताल में अब नहीं समझेबो तो और दुखी हुई हूँ चिंता नहीं करे क्योंकि समझाए पूरी बढ़िया से आओ
9: लौटी ठारो दवाई सब बने बढ़िया बढ़िया करो कह के सब बाटे बढ़िया बा मैंने घरे चिंता न करो कह के समझाई थी अस्ते कह के
10: सुनीता ठारू सबसे पहले उकरन जाके उकरन सचेत करे ना हो कि बढ़िया से रहो सपो कट ले भाई का हॉस्पिटल ले जाओ कह के और चिंता ना ले कह के समय में वहाँ हॉस्पिटल पोगी तो बढ़िया से दवाई बिरवा हुई कह के यह सब समझे ना हो ज्यादा चिंता ले तो ज्यादा टेंशन हो जिसका कट ले ओकरो टेंशन हुई कह के तुरे हौसला देव तो वह ऊंचा रही की चाहे बच जिम कह के नहीं तो फिर ऊंचा सबको ऊंचा करता है तो कोने मुठू की जीत हूँ वो संभावना रही कह के टोकरन की बच जीवे दवाई बढ़िया से हुई जाए ना ऊंचा करो तू रहो घर मन फिर हौसला देव कह के
11: सीतम चौधरी पहले तो मैंने गाँव घर में फूक एक झार ना हॉस्पिटल ले जाए अब तो कट्ठे तो तुरंत हॉस्पिटल ले जिठाए समझे थे कि मजा से रहो सांप कट्ठे तो जल्दी हॉस्पिटल पुरिया पड़त और अब पहले तनक गुरुवन धामिन ना देखा पड़त चिंता ना करे पड़त की तुझे संचो हुई जीवो कही के
8: राष्ट्रपति थारू समझाए परी कि बढ़िया से दवाई कराई ले जाओ, टेंशन न करो, दवाई कराई बोटो चोखे जिहिन घरे मन फिर बुझेबो, जिहिन साफ कर ले फिर बुझेबो, उहिन बढ़िया से दवाई कराओ ले जाओ यहाँ वहाँ कही के सिखेना, टेंशन नहीं करो कही के बटेना।
2: हमरा भकर सुनली सांप दशलक मुनिया व वाकर परिवार न हमरा करपना व्यवहार के विषय में हमारा श्रोता सहभागिन का विचार।
1: सर्पदंश गर्मी क्षेत्र ग्रामीण व गरीब जन समुदाय में विद्यमान व्यवस्था करगैलक एक स्वास्थ्य संकट हो। किसान बनो में काम करना मन गोठाला व मच्छरन कलाक सर्पदंश कलक पेशागत जोखिम फे हो। धीर जसिन सर्पदंश बीस निरलक सापन मसे हुईना कठा सप्पदस्तीकी मृत्यु हुईना डरक कारण बीस निलक जसिन लक्षण वा भ्रम पैदा करी था।
2: सर्पदंशक बेरमेन कर्जिना पहला प्राथमिक उपचार कलक बेरमेन सान्त्वना देन अर्थात शान्त रखा हो। काकर कलशे सापन का दसाई पाचा हुईना थ्यू डर का कारण लेखे बेरमेन का मृत्यु समूह विषक छन। दशलक हाट वा गुआराहन हलचल निहुईदेन एक ठोप प्रभावकारी उपाय हो। दशलक मनाएन आराम से वा का सुटाकर धर पठा तत्व लगा खेखे दशलक ठावन हिरा दिहे निवित गटलक भागन ढ्यूर चले से बीज झट्टो बड़ी मात्रा में रकट हो लिंक में फैलिना हुई को से ऊ भागन श्याकल कम चलेना कर पठा।
1: सपदशलक मने हन तत्काल कर पड़ा प्राथमिक उपचार का विषय में विज्ञक बात फे सुनी ना तय कर जी मैं तो सपदशलक मने हन काकर शांत ठर पठा ओ सपदस्ती की ऊ मन हन काका कर पठा काकर निहित कना विषय में ढ्यूर बात ठा पैना मन लगे।
2: अपना पिना जिज्ञासा हमार श्रोता सहभागी नौकन में फिर हुई सक पुष्पाजी बेन ढील निकन सर्पदंश संबंधी भेरी अंचल अस्पताल में कार्यरत विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य शेखर गैलक बातचीत सुनी दोसर बागी छलफल करबी।
5: सर्पदंश से ज्वार गैलक रोकथाम ओसेह का सचेतना व्यवस्थापन और प्राथमिक उपचार यही में व्यवस्थापन करना क्रम में सपा दस एकलक पाच ओसिन मनाइन हमारा कह कर पर्था
3: सर्वप्रथम तो सर्प चोटी सके कुन कन्टेक्स में
12: सबसे पहले तो सप का सेकलक पाच कहाँ कटलक हो कौन कन्टेक्स में कटलक हो उहिले ढ्यूर असर पठा जस्त रात खसुटल बेला में सप काटल हो कलसी ऊ विशा सप रहना संभावना एकदम ढ्यूर ठा ओसिन बेला में एउटा छोट छोट बाटो में निहल में राखन सर्पदंश पूर्ण उपचार जहां बा भेन्टिलेटर सहित एंटीभेनम उपचार जहां बा वहां ले जाई पर्ना हुई था अथवा कमती में स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाए पड़ल। सामान्यतया डगरी में न्यांग बेर काटल संजेक समय में काटल कलशी चाहे हुकर नन भेनोमस बीस निरल साप रह सकता वह फिर सबसे पहले तो सप काटल कलशी अकटाई नहीं हुई सबको साप बिखा नहीं रटा। हमारे नेपाल का संदर्भ में सही साप कटल कलशी नब्बे ठो साप बिख नहीं रटा वह वर्षे बिख निरल सप काटल हो कलशी उस सामान्य चिमट काटल से हो वहीं लिए कोनो अप्ठारो निपाट बेरमिया एक ठो टीटी खोप लगाकर घर पठाने से बिठा यदि हमारा सप बिखा नहीं हो कि कन्फर्म कर ली कलशे तर सबको मन वही कन्फर्म नहीं कर वह वर्षे सप कटल को लक्ष्य ऐठा कि कई खन ग्यारह बारह घंटा सम अस्पताल में ढरना चलन सही बा यदि अपना कन्फर्म बाटी सप फोटो खींच कर लेना बाटी सप भोख कर लेना बाटी सप मजासी चिन्ह एक रुझान देखा कर ई सप बिखा नहीं हो कना कन्फर्म बाटी कलशे
3: जस्ट
5: सप डसलबा कलसे उखर चलमलाए नि हुई शान्त रह पर्था कना बाट बाजे याकर विषय में कोच व्याख्या कर दे
3: ठीक कुरा हो
12: एकदम ठीक बात हो यदि सप काटल वो मनेक में बिख छोड़वा कलसे वो मनिया चलमला का न्यागल कलसे काटल ठाव से बिख मनेक रक्त संसार में से झट्ट फैल खाना मनेक ब्रेन संपुग से वो बिहान बिग का असर झटे पर्था वो वर्षे जहां कटलबा उठाउन रेस्ट क्रिकेट हाली कलशे ब्लड सर्कुलेशन में कम उठा वो डेहिक रक्त संचार में बिग पुग्न समय लगता वो अस्पताल सम पुग्न ब्याला समक लाग हमारा समय हन किन सेक्थी वो हुईला कोर्से निचलना निचलना कलक कारण ऊ हो वो अब अकटाई निहित करना बाट जब भी ठीक हो काकर कलशे कबू कबू सप काटल मनिया अकटा का व्यवस्थित हो सकता न्यूरोजेनिक सप हो जाए सकता वह वर्षे सैकल सम नियक्टा खन सपो काटल ठाव निचल ख निचला
5: सपो डसलक मन यहां डस्ती की अथवा डसलक पाच कुछ खवैना पियना बाट का विषय में का सलाह देवी
3: सर्पले डसी सके हमीले
12: सप डसलक पाच ऊ सप बिखा हो सकता वह वर्षे कुछ नियो खवाई कलक हो काकर कलशे यदि ऊ डोमिनिया सप कटलक हो कलशे 15 मिनट से आधा घंटा सम्म पूरा बिख लग सकता पूरा बिख लगने से मनिया बेहोश भी था बेहोश भी मनिया आप श्वास प्रश्वास का न लिया कंट्रोल में धरने से आकर वाकर लाल श्वास प्रश्वास नदी मजी था खाई चीज फिर उलट खा श्वास प्रश्वास में जा सकता वो मनिया निमोनिया हो सकता वो से खाई दिए निविट करना मान्यता हमारा लेला बाटी तर यदि सबो कट्टी के अस्पताल पुगली सबो फोटो खींच कर लेन ली अथवा सबो मार्क खाली वो सबो चिन्ह मैंने देखा कर ये सबो बिखानी हो कना कन्फर्म हुई कर से मुख बारे नहीं पड़ा
3: कन्फर्म भैस हमें मुख बारे राख्
5: सबो डसलक कटलक वा खोटकलक अथवा ज्या कही ओसिन ठमा बहन्ना चलन फेबा ओसिन बहन्ना चलन का विषय में कुछ कह चाहबी
3: सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भयो अब पहिला पहिला
12: सान्दर्भिक प्रश्न गर्ली पहिले पहिले चाहिँ कारह कलस सपो कटलक ठाउँसे बिख उपर नजाएकै खन बीस वहीसे उपर नजाएकन उद्देश्यले बाहन लिएर चलन रह तर कटला कर्ख बहन्ना कना ठानी उल्लेख पर्से कर्से बाहन लिए बेर मन बीस त बेन निसर फेस्याकर तर वाकर रक्त संचार रोग जाख मन खाट गोरा जो काट पर्ना हो उहीले ज्यान लिइसक्ने अवस्था होइन पर्से उहीन अब ओसी निकर्ना कनाबाट प्रोटोकलमा ढर्गेबा ऊ निकर्लक ठिक हुन्छ काकर कलसे निजान ख कलसे उहीले झन ढिउर क्षति पुगेन
3: किनभने गर्दाखेरि नजानेर गरेको झन् बढी क्षति पुर्याउने भयो
5: ओसेका मुन्द्री घडी पेटी
3: औठी र घडीको कुरामा चाहिँ
12: मुन्द्री घडी पेटी अथवा कोनो बालासाला घल्लबा कलसे चाहिँ हातमा गरमको निकर्लक सिमोदा हुन्छ पहिले जो निकर्ना ताकि सबको काटल ठाउँ सुइटी सुइटी जाकर फेर उहीले रक्त संचार रोग क्लाक सहयोग पुगाइसे ठा उसे शुरू मजो निकल्न से मजा
3: सहयोग पुर्याउन सक्छ त्यसो भएर शुरूमै निकाल्दा राम्रो
5: जस्तै यहाँ भेरीका अथवा मध्य पश्चिमका पाके पर्दिया कैलाली ओसेका दान देउखुरी कपिल वस्तुमा बाटी यी क्षेत्र सर्पदंशको प्रकोप फुलक क्षेत्र हो पुराञ्चलन जस्तै कि उदाहरणका लागि थामी छाक्री छारफुक कर्ण चलन बाँधिन्थे
12: खासै ख आदिवासी थारूङ र मधेसी जनतालाई आमिन ढिर बा एकचोक उदाहरण का बाकलसे राजखण्ड सपो कटक करिब एक बजे ओर दोस्रो बेरमे ह आपन मने सपो जितिहे पकड़ लेन्ड लेन्ड पाछ बेरमे ओरा स्याकल रह सपो अब जितिहे रह ओसिन अवस्थामा हुँको का कल कलसे सपो पूजा कर भिर न हुँ ड्युटी पूजा कर भिर न हुँ हुँको समय उहाँले बिटा बिरामी ओरा दे
3: समय उनीहरूले व्यतीत गरे र बिरामी मरे
5: साफ डस्लक पार्छ एम्बुलेन्स अथवा कोनो तरिकाले प्रेम्यान अस्पताल पुगेन सल्लाह देवी
3: सर्पले डसिसकेपछि सबभन्दा पहिला
12: सप डस्लक पार्छ सबसे पहिला आफ्नो आन्जर पान्जर कुन साधनमा जुन साधन झट्ट पुगाइसक्न भए सामान्यतया एम्बुलेन्स निउलेसे फेर आजकल गाउँ गाउँमा अटो रिक्सा पाल्दैछ मोटरसाइकलमा सप काटल मने होइन बिचमा रेखा लैजाइ सिक्दैछ कुछु निमिल्स फेरि साइकलमा बैठाएर फेरि लैजाइ सिक्दैछ असी महिलो कोर्से डग्री दूरी घटेन झट्ट पुगेन जोन मिरिक साधन भएको फेरि अस्पताल पुगाइ सक्दैन
3: हामीले चाहिँ अस्पताल पुर्याउन सक्यौँ
5: औरा जन सप डस्था उस सपको फोटो खिच पर्था कैका कथा यी कत्रा उचित सल्लाह हो
3: एकदम राम्रो सल्लाह सर यसले धेरै
12: यी बहुत मजा सल्लाह हो यी बहुत आइडिया रहेछ यहीले करबे बिरमिया अवस्या लाग्खन अनावश्यक दुःख फे पाइनु पर्छ डाक्टर फी विषाह सप हो कि निहो कि निश्चित कैकन बिरमिया घर फे पठाइसक्छ
3: घर पठाउन सक्छ
5: मुस्याको सापन फेर चलाइने हुइट छुवनी हुइट कना कहाइबा यहीमा कत्रा सत्यता बा
3: ठिक हो मरिसकेको सर्प भनेर मान्छेले भ्रममा पराय हुन सक्छ
12: सत्य हो मनै सप मुस्याकल हो कना भ्रममा फेरि परिसक्छ सप आराम गर्न बेला रहसेक्ठ सप मोल रहसे फेरि जिटिए रहसेक्ठ हो चलेले से खोटक सेक्ठा काटे सेक्ठा ऊ मोल सप हो स्याकलसम्म नि चलेन ऊ चलेले से फेरि सतर्क हो चलेन सल्लाह डेटो
5: हाम्रो सहर गाउँमा ख सप नचाख रम्ता देखैन चलन बा असीका सपुवाल्यानका रमता देखाइन कला कहरना चलन कत्रा उचित हो
3: त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यति
12: ऊ चाहिँ मेरो विचारमा ओटा ठिक नै हो हुक्र बिखा सपु रहेछ फेरि डाँट निकालका बिस साइड बनाएको ल्याउन रहेछ यहीले नर्कनको का परेछ ठङ्क रहेछ ए सापन त खेलाइसक्दिन रहेछ साप कला र सहयोगी प्राणी भइट कहु कला भरम परेछ ठन दुस्साहस आइसक ठन ऊ वर्षे ओसिन प्रवृत्ति रहला ओसिन लर्कन देखाइनी
5: आजकल सम्पन्न बचाइन मनै फेर देखप्रतिबाट सापन रेस्क्यू गर्न मनैनका सल्लाह देवी
3: सर्पको रेस्क्युरहरूलाई
12: सापनको रेस्क्युर हुकन एकदम मर शुभकामना बा मजासे सापनको रेस्क्यू गरी सापनको रेस्क्यू कटी कटी अप्नको रेस्क्यू गर करना पर मर शुभेच्छा बा काकर कि सापनको रेस्क्यू गर्ना काम खतरनाक काम हो असिन जोखिममा रहेको फेर उहाँको काम कटीबाट सापन मुनामा से जोगिना अनावश्यक मुनामा से जोगा एकलाक उहाँको भूमिका र था 18 गति कति फे झ्यू जेसकी और हुकनक देहान्त भइलक हाम्रो सुन्न बाटी उहो वर्षे पूर्ण रूपमा पोख्त निवख तयारी निवख संगसंगयनका व्याकप निवखन रेस्क्यू कर निजाइक लाग्मै अर्जी गराठु
3: सुझाव दिन चाहन्छु
1: सफा डेस्लक मनेयन तत्काल करपना प्राथमिक उपचारका विषय विशेष कै ख सर्वदंश बिरामीन शान्त धरपना ओ खैना चिज खवाई निविना विषयमा सक्कु झन प्रश्न पार्देलक म सर्वदंश सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य प्रति आभारी बाटी
13: नरेश दादु मैं तो अपना फोन आ गई नो है बहुत कहाँ बाटी
14: ओ गोन्दे में सुटल बाटी बाबू चोली न भरे
13: फौजी कहाँ से काटल अपना है अरे आदर पावे तो सफा सुखर बने बाटी तर फिर पार्टी की डाल ना अपना है ना
15: यहाँ पोली भूकर कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटाबे में को आप ना हो
13: ना ते भौजी हमरा बाटी अपना है ना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा है ना जिन से रेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था नगर के क्रो मोटरसाइकिल बाक लाचे वही में बैठा कर भौजी है ना सरपरस उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
14: ये बेला तक खैला जात फे दिए न्यू इट ना स्वयंसेविका दीदी
13: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर रो निकट सम बेरमेन कुछ थे खवाई ही हुई
16: सफवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकला सफवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकल से फाफर करा दी बेरमने अक्टेले से झन समस्या बिना भेल कोशित बेरमने आना शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सफवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ीले कस्क भन्ना के कठ असी कर्ण से रक्त संचार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीरको भाग काट खफाक पर्न अवस्था थिए आइसिक था
1: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभ था
0: अत्रा बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्तिबाटी
2: आज हाम्रा सपोर्ट दर्शक मुनेयन तत्काल कर्पण प्राथमिक उपचारको विषयमा संवाद गर्तीबाटी अबसम्म हाम्रा श्रोता सहभागिनको विचार हो सर्वदंश सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर शेखर गिरक बाटी सुन्ली
1: अटा बेला मर बिन्दु होम कुमार बटको एक तिसरा पैठार सुन्न बेला हुल्बा सर्पदंश सम्बन्धी जनचेतना फैलैन अभियानमा सक्रिय बिन्दु होम कुमार आगत भागमा भ्रमण सर्थे हमार पर्यावरण अभिन्न अंग हुइला कोर्से हिकन मार निहित कना बाट सिखैला सर्पदंश से बच खरक आंजर पांजर लठ्यांग घास ब्याल ब्याल में काटक हटैना फोहर का उचित व्यवस्थापन करना अन्न भंडारण में साप आकर्षित हुई ढेक लाख सुझील
2: हंग कुमार का पड़ोसी नथुका के घर में साप ऐनक मुख्य कारण खरक आंजर पांजर झापास वो काठी कटकोरा हो कना बाट सहज अनुमान नाटिका में से भूलवा नथुका का घर से निष्कटी कर बेल बिंदु हंग कुमार मेला जीना बाट करती रह होम कुमार खाठम सप्प डसल घाउक डाग बाट फेक भेटी रहन उठ्रेमन दिनेश न सप्प कटलक रेख बिन्दो अन फोन रहन दिनेश को विषय में थाहा पाएक लाग ओ हुकार उपचार कसी को उठन कैक बुझ हम फे बिन्दु होम कुमार सुन जाए ना
14: मैं सप्प काटल मैं मोजिम की काब
6: जिंदा रह ना सुखराम टाइम बैसो ना होम कुमार बिन्दु से आ गए
13: ना डराओ ना सुखाम तुन कुछ निविका निजर आखा सुटल रहो
4: महिटा एकदम डर लागत बिंदु
0: सुखराम जिन डराओ का कुछ नहीं तुहिन शांत होकर बैठी था वो सबका कटना छाव ना चलाओ वो ना हिलाओ वैसे था
14: बैठा
6: आप हमरा तुहिन सर्पदंश उपचार केंद्र में लाई जेबी अनी तो ठीक हो जाएगी ना अंकुमार
14: हो नी सुखराम नी चल के चिमचाम रहो मैं तुहार बेल्ट पेटी मुंद्री घड़ी झिक दे तू ना
6: बैठा एम्बुलेंस ऐना समय लगी कि का अपना बाइक में बैठा कर ले जाना हो कि कुमार
0: बैठा बैठा बिंदु दिन बारह निकला कर तू और उना मित्र का मोर बाइक में बैठा हो दूसरा तू पास से चूर का सुटका में पक रहो अच्छा उपचार केंद्र में नहीं जा रही
6: ले और उना मैं यहाँ सारे करो टा सुटका में बाइक में बैठा कर बैठा बिंदु मैं दाई नौ से पकड़ के उठे तू बाव से उठे हो ना बैठा ले रसा रसा ना सब वक्त लग बारह नहीं लाओ ना सुटका अनी हुन कुमार अपना बाइक स्टार्ट करी था
0: बैठा मैं बाइक स्टार्ट करत हूँ ना
6: हो लो सुस्त सुस्त धरो था बाइक में लो उठाओ सुखा मनाओ ना बैठा बिंदु लो विन
15: आप अपना पे छोरी बिंदु बैठी
17: बैठा अपना सुखराम होना पकड़ न रही ना मैं इजोर संग
15: बैठा जी विल हम कुमार जाइ
18: जी अरुणा हमरा पुख्ता है ना
15: बैठा बैठा
1: अपने यहाँ ब्याला में सर्पदंश उपचार केन्द्र में लियान का ढ्यूर मजा कर ली असिंध्याला में सपुन से पहले यातायात के माध्यम में ज्याबा उहिले उपचार केन्द्र में लियान डारा पड़ता डांसी के लिए ढील करना से फिर भारी भूल हुई था वो पछताई पड़ना हुई था अनि सुखराम भाई मोर मुख्य प्रश्न सपवा कसिन रह
15: सपवा तो गरे चाह स्वास्थ्य कर्मी दी सुखराम को जुत्ता मनुख को बैठन रहता हूँ जुत्ता ढाला बे तो काट डारा
1: ए पक्क बाटो न घर चाहो कोई छ
15: पक्क बाटो दिदी मैं मोबाइल में फोटो भी खींच रहा था
1: ए हो न ठीक बा मैं आप सुखराम बीच विरोधी बीरोक सुई लगा देम दोसर तो ठीक हो जाइए कहो ले अब निदराख आराम करो तो मैं सुई लगा दे दारू
18: ले सुखराम आप डराई नहीं पड़ी ना
19: धन्यवाद ना ओम कुमार दादू बिंदी दीदी अपना होकना की गुण में कब्बू फैनने बिस्रे
15: ले आप असिन बात बटुना समय लिखो आराम करो
1: ले सुई फिर लगा देने आप चोखा जेबो तू वो अपना होकर ढूंढ जहां ठीक थी धन्यवाद बाना काजे कलश इस समय में अपना होकर यहाँ सर्पदंश उपचार केंद्र में लान खे तम मजा कर ली काजे की सापन का कटाई ले प्रभावित मने समय में जो उपचार कर सेख नशे बचाए सेख दी था वो यही ले हुई ना मृत्यु फिर कम कर सेख दी था
18: वह अवस्थित हजार हजार सैख सर्पदंश उपचार केन्द्र में लेकर लाखों स्वास्थ्य कर्मी दीदी
1: अनि सही वो भरपर्ना जानकारी पाएक लाख वो लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाएक लाख वेब पेज snakebitenepal.org में वो www.facebook.com/snakebitenepal में फिर लगन कैख आवश्यक जानकारी लिए शेख जिठाना
15: वो कटरा माटे

0: सामुदायिक रेडियो टीका पुरफ्यूंगे संजीक पांच बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने उखरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोलाभ सम्रपात्र ओ नेपाली पात्र मुफे सुन्दी धरबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से लोटी के सेती लदिया में फसल 11 जना के सकुशल उद्धार संगड़ी में 17 में कान की मुद्रा के लाग 10 वर्षीय बालक की हत्या हुई लगा आशंका काठमाडौँमा बर्ड फ्लू भर्ती 11 जिल्लाकी 82 स्थानमा संक्रमण पुष्टि ओ न्यूजील्याण्डसँग पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा आप्रा खबर डोटीकी दिफाइल सिलगढ़ी नगरपालिका दुई स्थित सेती लदियाके बीचमा भागमा फसल 11 जना के सकुशल उद्धार कलबाट वहाँ उक्र शनिबार सशस्त्र प्रहरीकी टोली सकुशल उद्धार कलबाट सेती लदियाकी स्थित शिव मन्दिरमा पूजा गर्न गएलक स्थानीयवासी तटबन्ध निर्माण गर्न बहनलक अस्थायी बाँध फुट्ना हुइलक लदियाकी बीचमा भाग फसल रह उद्धार कलक ओह नगर पालिका के दुई बैठना 86 वर्षीय मोहन पाठक 76 वर्षीय प्रेम बहादुर कठायत 70 वर्षीय शिवराज कठायत 69 वर्षीय बालूराम कठायत 74 वर्षीय हेमराज जोशी 65 वर्षीय बाठु कठायत 80 वर्षीय पदमराज भट्ट 60 वर्षीय सन्जा श्रेष्ठ 38 वर्षीय दीपकराज पाठक 9 वर्षीय कृष्ण कठायत 6 वर्षीय ब्रन्डन कठायत रहल सशस्त्र प्रहरी जनैलबा धनगढ़ीमा तीन दिन से बेपत्ता बालक की हत्या कलक अवस्था में फेला पर्लबाट बुधवार संझे से बेपत्ता धनगढ़ी उपमहानगरपालिका सत्र के उत्तर खैनी मुक्त कमैया शिविर के निमराजो चौधरी राधा चौधरी के 10 वर्षीय छावा तनु चौधरी हत्या कलक अवस्था में शुक्रवार स्थानीय वनमा मित्र भेटगिल्वा धनगढ़ी उपमहानगरपालिका व गौरीगंगा नगरपालिका के सीमा क्षेत्र मरलक कालिका सामुदायिक बनुआ भीतर फेला पर्लक वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय के अनुसार चौधरी प्रहरी व स्थानीय खोजना क्रम वनमा मित्र भेटगिल्वा वहां के चहतेलक साइकिलो चप्पल फेसअप लग फेला पर्लक प्रहरी बोटिलोट वहां के सब भेटलक ठाउँमा रगत लरपत्ती अलग ढुंगामा फे भेटलक वा बालक के सब आधा सरलक अवस्थामा रह प्रहरी के बालक मृत्यु भेटलक घटना के अनुसन्धान कर्ती रहलबाट प्रहरी के अनुसन्धान के लाग चार जना नियन्त्रण लग जनेलबा वहां हुक्र पहिचानमा फे सार्वजनिकरण हिट मृतक चौधरी उर्मा बोर्डिंग स्कूल दुई कक्षामा अध्ययन गर्थ वहां के असार 10 गते धान लगेना घर से लुटना क्रम बेपत्ता हुई लही गांव के चार पांच जना किशोर उपसंग गंगटा पकड़ना क्रम तनु धान लगाई खेतों में गई पाछ साइकिल चढ़ती घर तरफ अलग बोट गिलवा संजय मृतक चौधरी के दायो बाबा काम मस्से लुटना अलग तनुष घर में नहीं देखल पाछ वहां खोज तलाश शुरू कर लही रातभर गांव लग बन में खोजलक फिर वहां नहीं भेटल पाछ प्रहरी के म खोज तलाश के लिए निवेदन दिल रहे 12 गते फे डगरी मेंग्ना क्रम दुर्गन्ध आइल पाछ स्थानीय दुर्गन्ध ऐलक ठाम हेलक तनुष के सफेला पलक स्थानीय पुष्पराज राणा बुटिलोट निमराज ओ राधा चौधरी के एकलह संतान तनुष के हत्या हुलक प्रारंभिक अनुसंधान में से देखलक कैलाली प्रहरी जनिलवा सब छाड़ी में लुकेलक अवस्था में फेला पर्ल लक्ष्मी वहां के चहना साइकिल में फे घटनास्थल फेला पर्ल रह घटनास्थल में करीब 10-12 ठाव में भूई में रगत देखल से फे घटनास्थल में रगत लगलग ढुंगा फेला पलक मृतक के माओली बुढ़ी अनिता चौधरी बुटिलोटी मृतक के बुढ़ी अनिता के अनुसार तनुज के एक कान में एक ठो आना के सुन के मुद्दा रह वहां के मुद्रा के लाग तनुज के हत्या हुलक हुई सकना वहां के आशंका बा प्रहरी में फिर मृतक के कान में मुद्रा फैला नई पलक बोटाइल बा जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली के सह प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक कैलाश विष्ट सबके कान में मुद्रा फैला नई पलक जानकारी करे वहां अनुसंधान के लाग चारजना नियंत्रण में लेके सोतफोस उठी रह बोटिलो इन परिवार में फिर तनुज के हत्या सुन के लाग हुलक हुई सकना बोटिलो धुरजन्ना क्षेत्र में बाल बालिका के कान में मुद्रा चोड़ना घटना बहलक स्थानीय बटेलोट लागू अवसर दुर्वेशन में फसक युवाओं और बाल बालिका के कान में मुद्रा में झिके लग्ना घटना हिंसा का फे घटलक बटेलोट ख खोज खबरमा एक विश्राम विश्राम पासा फेरि सेवी सुनतिर विश्राम सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
2: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
1: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
2: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
1: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
2: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
2: ईसीजी सेवा,
1: डिजिटल एक्सरे सेवा
2: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
1: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
5: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जै भो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
6: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
5: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न, कबू कहो घुम जाए त था पाए।
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98484 43 26।
0: काठमाडौँ उपत्यकामा पाछ 3 महिनासे यहाँ देखलक बर्ड फ्लू एचआई 5A1N1 संक्रमण हाल तीव्र रूपमा फैलल बा। पशु सेवा विभागके अनुसार हालसम्म 11 जिल्लाकै 82 स्थानमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। रोग नियन्त्रणको लागि प्रभावित क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाइना भए। विक्रमसम्म 2082 चैत 4 गते मोरङमा पहिलोचो बर्ड फ्लू पुष्टि हुन पाछ छापा सुनसरी महतोरी 12 चितौन नलप्रासी काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर काभ्रेपाचोकसम्म संक्रमण फैलिएला। पशु सेवा विभागके महानिर्देशक डाक्टर उमेश ढालके अनुसार संक्रमण नियन्त्रणकै क्रममा हालसम्म 5,69,858 ठोक पक्षी नष्ट कलबाट स्थक 9,89,313 ठो अण्डा हो 1,954.85 क्विन्टल दाना फे नष्ट कलक उहाँ जानकारी दिलाबाट। रोग नियन्त्रणकै लागि पशु सेवा विभाग उप महानिर्देशकके नेतृत्वमा बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना कलक संघ प्रदेश स्थानीय तह समन्वय कर्ती प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोली परिचालन समेत कलबाट। विभागके अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशकी झापा मरौं सुनसरी संघ 12 महत्तोरी सिताउन नलप्रासीमा संक्रमण नियन्त्रणमा आसेकलबाट तर काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर तथा काभ्रे पाल्चोकके कुछ क्षेत्रमा संक्रमण आफ्नो देखैतिरहल। विशेष निगरानी बढेलक महानिदेशक डाक्टर दाहाल जानकारी दिलबाट संक्रमित भाइरसमा कोनो आनुवंशिक परिवर्तन म्युटेशन हुलक वा नै हुकैकि यकिन कर्ना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला संघकी सहकार्यमा भाइरसकी जीन अनुक्रमण प्रक्रिया फेसुर कलक विभाग धन्यवाद। विभागके पंक्षी पालक किसान फार्ममा जैविक सुरक्षा बायो सिक्युरिटी के मापदण्ड कडाईके संघ पालना गर्न पुरान अण्डाकी क्रेट पुनः प्रयोग नै गर्न ढुवानीकी साधन पूर्ण रूपमा निसंक्रमण कर्की फार्म भित्र प्रवेश गर्न तथा जंगली पंक्षीसँग घर पालुवा पंक्षीकै सम्पर्क हुने दिन आग्रह कलबाट शंख पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनकै ओसार पसार गर्न अनिवार्य रूपमा भेटनरी प्रमाण पत्र लिन अनियमित खोप लगेन तथा कोनो फार्ममा अस्वाभाविक रूपमा ध्यौर पंक्षी डेमेव मरमूलक देखला तत्काल कहाँ पशु सेवा कार्यालयमा जानकारी गर्न विभाग अनुरोध कलबाट चालू आर्थिक वर्ष पूरा हुन 19 दिन हुलक सरकार राजस्व संकलनमा लक्ष्यकै 75.17 प्रगति हासिल गरिबा सरकारकै दैनिक बजेटरी हिसाब किताब धर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै अनुसार शुक्रबारसम्म 11,12,48,86,00,00,00 राजस्व संकलन हुलबा सरकारकै चालू आर्थिक वर्षकै लाग 14,80,00,00,00 बराबर राजस्व संकलन गर्न लक्ष्य धर्गिल रह बाँकी दिनमा 3,67,51,00,00,00,00 राजस्व संकलन गर पर्नामा वकलाग दैनिक गरिब 19,34,00,00,00,00 बराबर संकलन गर पर्नामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै अनुसार कर राजस्व संकलनतर्फ लक्ष्यकै 76.20% प्रगति हुलबा कर राजस्वतर्फ 13,25,58,39,00,00,00 संकलन गर्न लक्ष्य रलक हालसम्म 10,10,16,03,00,00,00 संकलन हुलबा वस्तुका गैर कर राजस्वतर्फ 1,54,41,61,00,00,00 संकलन गर्न लक्ष्य रहल हालसम्म 1,02,32,43,00,00,00 प्राप्त हुँदा वस्तुका अनुदानतर्फ 53,44,69,00,00,00 प्राप्त गर्न लक्ष्य रहला खालसम्म 24,11,12,00,00,00 क्लिक प्राप्त हुँदा जुन लक्ष्यकै 45.11% बराबर हुँदा ओहविधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकमा 6,50,53,00,00,00 संकलन हुँदा औसतसँग सरकारकी कुल प्राप्ति 11,43,10,11,00,00,00 पुगलबा जुन वार्षिक लक्ष्यकै 74.54% रहलबा वस्तुका कुल सरकारी खर्चतर्फ 14,04,98,86,00,00,00 बराबर पुगलबा यही कुल लक्ष्यकै 71.53% बा शुक्रबार क्लिक 5,36,82,00,00,00 खर्च हुलबा खर्चकै प्रकृति अनुसार चालुतर्फ 80.42% रहलबा कुल 11,80,98,00,00,00 लक्ष्यमध्ये 9,49,75,95,00,00,00 खर्च भइसकेको विकास निर्माणकै काममा खर्च हुना पुँजीतर्फ 1,42,23,68,00,00,00 पुगलबा जुन लक्ष्यकै 34.87% हो चालू आर्थिक वर्षकै लाग 4,07,88,80,00,00,00 पुँजीगत खर्च गर्न लक्ष्य तय गरिल वस्तुकर्की वित्तीय व्यवस्थापनतर्फकै खर्च 83.41% पुगलबा वित्तीय व्यवस्था ढेरोचिन्द्रिनकै सामा तथा ब्याज भुक्तानीकै लागि खर्च गर्नमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल 3,75,24,20,00,00 लक्ष्यमध्ये 3,12,99,23,00,00,00 खर्च हुलक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै वितरण उल्लेख रहलबा खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
8: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
9: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
9: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने

0: चाहिएको छ। यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
1: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
2: विश्राम पाछा फ्रेसे स्वागत बा आप खेल खबर। न्यूजील्याण्ड पराजित कति बेल्जियम विश्वकप फुटबल के नकआउट चरणमा प्रवेश कलबाट क्यानाडा के बीसी प्लेस भ्याकुभर स्टेडियममा शनिबार हुल खेलमा बेल्जियम न्यूजील्याण्ड 5-1 गोलके फ्राकिलो अन्तर पराजित कति अन्तिम 16 आफ्नो स्थानमा सुरक्षित कर्लबा। इन्सियाका दुई प्रतियोगितामा लगातार दुई खेल बराबर गोल कलक, बेल्जियम पहिलो जितसँग 5 अंक जोडी समूह जी के विजेता बनके नकआउट चरणमा प्रवेश कलबाट। बेल्जियम के जितमा लिएन्ड्रो ट्रोसार्ड दुई गोल कलसेफे, केविन डे ब्रायना, रोमिलु लुकाकु, एलेक्सी सेलमक्स समान एक एक गोल कलबाट। ट्रोसार्ड खेलके 28 मिनटमा गोल कर्ती बेल्जियम अग्रता दिल रहे। उहाँके 50 मिनटमा दोस्रो गोल कर्ती टोलीकी अग्रता दोब्बर बनिल। ओकर पाछा डे ब्रायन 66 मिनटमा तथा लुकाकुले 86 मिनटमा गोल कला। दोस्रो हाफके अतिरिक्त समयमा सेलेमेक्स औरो गोल थप्लै। न्यूजील्याण्ड केलाक एलिजा जस्ट 84 मिनटमा सान्तवना गोल लटोले रही। आश्विलक और स्पाडमा इजिप्ट ओ इरान एक एक गोल कल्के बराबरी खेल्नबाट। यस अंक समूह जीमा बेल्जियम 5 अंक सहित समूह विजेता बन्न सेफे, सामान 5 अंक हुल सेफे। गोल अन्तरके आधारमा इजिप्ट उपविजेता बन्टी नकआउट चरणमा पुगलबाट। इरान 3 अंक सहित तेस्रो स्थानमा रहलक, 1 अंक केही जोड्न सफल। न्यूजील्याण्ड प्रतियोगितामा बाहिर हुलबाट। यही समाचार संघ खोज खबर वरेल जनासे पहिले खबरके मुख्य शीर्षक फेरि एकचो। जुटकी स्थिति लद्यामा फसा 11 जनाकी सकुशल उद्धार। धनगढ़ीमा 17 कान्की मुद्रा किलाक 10 वर्षीय बालकी हत्या हुलका आशंका। काठमाडौँमा बर्ड फ्लू बहती 11 जिल्लाकी 22 स्थानमा संक्रमण पुष्टि। न्यूजील्याण्ड अपराजित कति बेल्जियम नकआउट चरणमा। दीता बुकला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र रत्नापुन मग्रह धन्यवाद देती अबुकला खोज खबर से मैसिता चौधरी विदाई टू एक पास 6 बजे की खोज खबर सुन सकबी। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रहबी। राम राम।

0: नरेश दादू मैं तो अपना फोन आई की दौड़ती आ गई नो है भौजी कहाँ बाती
1: ओ गोंदे में सुटल बाती बाबू चोली न भरी
0: भौजी कहाँ से काटू अपना हन रख आदर पावे तो सफा सुखर बने लो बाती तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना हन
2: यहाँ पोली ऊपर कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा बेर में खुआ पुमना हो
0: ना ते भौजी हमरा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा हना जिन सर एक दिन वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे से था नगर के मोटरसाइकिल बाक लचे उन्हें में बैठा कर भौजी है ना सरपरल से उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला का खाना जात है दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक करी डॉक्टर और निकट सम जरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए लाख सपवा कटलक अंग स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फफल करा दी बेरमिया अप्रेल से झन समस्या बिना भेल कोशिश बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबर नाथे कठ असी कर्ण से लक्त संसार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेरा सेव दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा
7: यही असार 20 गते शनिबारका दिन
6: वहलपुर मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ मानसिक लागू औषध तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन बेलबासे MBBS MD बिरामी जाँच गर्न चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ
8: DNA सेवाहरू बेला बेलामा मुटु ढुकढुक हुने हात खुट्टा काप्ने या चिसो हुने धेरै पसिना आउने मनमा छटपटी हुने ज्यादै झस्कने तर्सने या डराउने भएमा
6: असामान्य रूपमा धेरै लामो समयसम्म टाउको दुखी रहेमा
8: बढी बिसाउने झिजो मान्ने झर्कने जिउ दुख्ने दुब्लाउने निन्द्रा नलाग्ने भोक नलाग्ने भएमा
6: काम काजमा मन नलाग्ने त्यसै दिक्क मानेर बस्ने भएमा
8: असामान्य रूपमा एउटै कार्य बारम्बार दोहोर्याउने भएमा
6: धेरै रक्सी खाने वा लागू पदार्थको सेवन गर्ने भएमा
8: आत्महत्या गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेमा
6: याद गर्नुहोस् है
8: यदि यस्ता लक्षणहरू मध्ये कुनै एक लक्षण मात्र पनि धेरै लामो समयसम्म लगातार देखा परेमा यसले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोग लागेको हुन सक्ने संकेत गर्दछ
6: त्यसैले सम्बन्धित बिरामीहरूले नाम दर्ता गराई ढुक्क हुनुहोस् स्थान चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक सम्पर्क मोबाइल नम्बर 091-560-856 र 98-580-29-700
9: बैंकले कभैलाई कसै अवस्था मिलै तमरो ATM मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन यदि कसैले कसै माध्यम बठियाईलाई तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दु खोज्दछ सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणितहरू उनीहरू विवरण मागिभर बैंकमी सोधौ सतर्क रहौ ठगि बठिए बचौ
10: सिद्धार्थ बैंक बठियाई जनहितमी जारी सन्देश
11: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैव भरिलाई।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जेबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
0: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना कटा सुगुर बनैला बाट अल्युमिनियम के मुआका द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घुम जाए था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426
6: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग अपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुई लग मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423759
7: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

भ्रष्टाचार करू या मनन खुल्के विरोध गरी, भ्रष्टाचार रहित सुशासनयुक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग गरी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरसे जनहितमै जारी सन्देश।

0: बुका पिएरै ठक बिपेन सिलेरै ठक बु झनै फटाका आजि ठक का कना हो बाबा फे ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखले का हुई थी जरम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपि हेरा कै ठक कबु पेंसिल हेरा कै ठक कबु झोलै फटा कै ठक बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लंग बो ओटा का हो टीकापुर म रलक रडगैया झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबु लड़का का पिएरै थी ना कबू पेंसिले रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियेक आनल झोला दस काटस बाटिन ई बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुही
1: लिया लिया मैं अब दिन जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: सामाजिक सञ्जालमी निकेरी जाँची बुझीभर बैंकको आधिकारिक प्रोफाइल मात्रै फलोहरू कसैले लिंक खोल्लाए अगाडि त्यो क्याको लागि हो, कहिले पठाएको हो रे, कहाँ जान्छ निकेरी बुझीभर खुल्याएको वेबसाइटको URL चेक गरौं।
1: अप्रिय घटना हुन नदिनलाई समय समयमी आफ्नो पासवर्ड बदलौं। आफूलाई केही शंका लागेले बैंकलाई छिट्टै खबर गरौं।
2: सतर्क रहौं, ठगीबाट बचौं।
1: सिद्धार्थ बैंक पठाइ जनहितमी जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
4: उहाँ त हेर बुढिया, बर्खाक समय फेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसुवा आयल कलश आब मुसुवा खुस्ती सब अथे आइ सक्छा।
5: ओहो हो निका, ठ्याक्क सम्झनु घरक आन्दर पाजा झोसास छे बाहर छे कच्छा कता हिलबा काट पर्ना रह।
4: असी करी हेर बुढिया, ओसिन्हो कलशे काल मिट्टी न हो चेला रोटी पकाएर बासी खाई दोस्रा सर परिवार मने मिलक सर सफाई करबी दोस्रा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन करबी तनी हुई
5: मीठा हो बुढ़वा असी डाला मत ध्यान ध्यान फोहर झपास भी था मा साफ नुख बैठल रह सकते ना
4: वह और सेटा कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलक घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से सांप मुस्कुचू के पैठनी सेकना मिलकर चपट डारा पड़ल दोसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा फुला से साफ पहिना का उष्टहा कम हो जाएगा
5: कल सनिश्चर थे हो ध्यान का फुसत थे बा
6: साफ बरखा छाकक समय मा सुखा ठामा बैठ मन परै था इ मौसम मा आपन बस्यारा मा पानी पैठना फिला कोर से सुखा ठाम का खोजी मा उकरा बाहर निस्कट
7: मुस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम फे साप मानव बस्ती लघ आई सक
8: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिह सक्दै था
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

बाबु आमा छोरो छोरो छोरो सेरो फेरो एक्लै आउनु एक्लै जानु तेरो न मेरो हुर्कायो बनायो आर्जन खान लाए ए होइन रहेछ बुढे।

महाराज परीक्षित श्री सारा संपूर्ण प्रकार को प्रक्रिया में पूर्ण भैर माता श्री इस प्रभाव बाट अब म कसो करूं भगवान लौन दया को सागर भनेर विनती करने वाला छोरो राजकुमार जंगल जानु भो जंगल में पालन भई सके अहिले परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्रीहरि यो प्रभाव बाट इच्छा पूर्ण करना को लगे शाश्वत ब्रह्म ज्ञान को उपदेश को निमित्त अहिले तैयारी भएर अब कहाँ जाऊं के गरौं कसो गरौं बड़ा अप्ठारो पर्यो र त्यो अप्ठारोलाई भगवान परमात्मा उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गिरेको राजकुमार अहिले जब जब नारद नाम गिरेका ऋषि को पार्श्व जंगल में पुगे आफ्नो स्वागत नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सपन को कथा है सद्याबाट महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी ने उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव सौतने आमा का कोपरूपी वचन को बाणबाट तीर्थ करना का लागि जंगल जानुभयो। बीच बाटो में गई सके रात्रि का समय में आमा ब्यूजन रुनु उत्तनपाद राजा का छोरा ध्रुवलाई नारदले सम्झाउनु राजन जान हुँदैन तिमी सानो छौ बाबा कहाँ जान्छौ भनेर सद्दाखेरिमा म उत्तनपाद राजा को छोरो ध्रुव मेरो सौतानी आमाले मेरो बाबा को काखमा बस्दा आज गलत त्यार हुराइदिनु भयो अहिले जब बाबु को काख त पाइन भनेदेखि राज्य कसरी पाउला मलाई सारी चोट पर्यो सारी मर्म पर्यो मरम मरममा घाउ पर्यो यसै कारणले म जंगल जान्छु गुरु आज्ञा पाम तमाम देव आज्ञा दी बख्नु पर्यो मेरा गुरु भनेर भन्दा मेरो राजा तिमी सानो युवा बच्चालाई कसरी आज्ञा दिऊ जंगलमा बाघ भालु हात्ती गेडा को भय मरी बसान को भय प्रेतात्माहरूको भय जान हुँदैन भन्नुभयो यसो होइन गुरु म जब मर्न तयारी हुन्छु तर फर्कन चाहन्न विधान सिकाइदिनुहोस् भन्दा लो मेरो बाबा तिमी अहिले सरासर जाऊ यमराजको उत्तरपट्टि एउटा मधु नाम गरेको वन छ त्यो मधु नाम गरेको जंगलमा गएर भगवान नारायण वासुदेव प्रभु को ओम नमो भगवती वासुदेवाय भन्ने यो मंत्र पढ़ थोड़े दिन में भगवान प्रसन्न भई बक्सने तिम्रो चित्त भगवान में लाओस् यही प्रकार को तिमला शुभ संदेश का साथ आज जाऊ तो भनेर भगवान प्रभु ने पठाई दिनु भयो उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गरेको राजकुमार अहिले मधुबन में गए भगवान नारायण वासुदेव को परब्रह्म चित्त लगाइकन ध्यान करना लाग्नु भयो ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो

महाराज परीक्षित में सुखदेव स्वामी ने आज्ञा कर आदरी से प्रणाली बने राजा परीक्षित का प्रतिमा सुखदेव स्वामी ने आज्ञा करी बक्सु पछाड़ी बाट उत्तन पाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गरेको राजकुमार ने पहिलो महीना में एक महीना में के गर्नु भो तीन दिन बिराएर फल फूल खाएर तपस्या करने। दोस्रो महीना में छ दिन बिराइकन हरियो सागपात खाएर तपस्या करने। तेस्रो महीना में नौ दिन बिराइकन सुकेको पत्ता खाएर तपस्या करने। चारों महीना में बारह दिन बिराइकन जब वायु भोजन कर तपस्या करने। पांचों महीना में श्री ब्रह्मांड सारा संपूर्ण कर जब जब भोजन करना का लगे ते वायु भोजन कर तपस्या करने। अनि त्यसदेखि पछाड़ी महाराज परीक्षित अब तपाई के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर राजा परीक्षित लाए। सुखदेव स्वामी ने बड़ो प्रेम का पूर्वक आज्ञा गरी बक्सो। त्यसै अवस्था का बीच में शौनक आदृशी प्रणाली भनेर महाराज परीक्षित लाए। सुखदेव आज्ञा गरी बक्सन्छ अब त्यहाँ देख्नु उपरांत तपाई के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर राजा परीक्षित को हजुरमा सुखदेव स्वामी ने आज्ञा गर्दा उत्तनपाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गरेको राजा को समाधि जब खुलेन भगवान ने आएर उभिनु भो। पांच जनी शंकरले प्रभुले गएर गाला में छोइदिनु भएको थियो। बल्ल ध्रुव को समाधि खुल्यो। युवंत प्रवेश मम बाच मीमा प्रसूतम संजीवैत किल शक्तिधर यशो धामनाम अन्यत्र हस्त चरण श्रवण त्वगारिन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुम्यम। भगवान हजुर को पाऊ को सेवा गर्न पाऊ मैले त हजुरलाई नचिनेको सामान्य मैले कोही सोध्दै नसोचेको आज मेरो समाधि खुल्यो प्रभु को दर्शन पाई धन्य जन्म सफल भनी गर्न तब ध्रुव नाम गरेको राजकुमार परमात्मा का चरण में परेर ध्रुवलाई भन्नु भयो भगवान ने जे माग्छौ त्यही दिन्छु के मागौं प्रभु मेरा पिताजी ने आर्य को पुष्करा व्रत को राज्य पाऊ भन्नु भयो। ए बाबा पुष्करा व्रत को राज्य तो अघि नै पाउनु पर्ने नीति में हो अप्ठारो कुरो नै होइन। बाबा को कान्छो छोरो भइसकेपछि मने जेठो छोरो भइसकेपछि पाइहाल्यो नि भन्नु भयो। अब भगवान के गरौं भनेर सोधा तिमीले जानेनौ सानो मेरो कोनाको कारणले राज्य सञ्चालन गर राज्य सञ्चालन पक्ष परिपूर्ण गरिसकेपछि 36,000 वर्षसम्म पृथ्वीमा राज्य गरेर कालका श्रीमा पाऊ राखी तिमी ध्रुव लोक जाऊ है भन्नुभयो। जय होस् नारायण यही हो मेरो काम भनेर अहिले भगवान अन्तर्ध्यान। उत्तनपाद राजाका छोरा ध्रुव आफ्नो समाधि युक्त आफ्नो दरबार सवारी सारा जनहरूले फूल गुच्छा माला सारा बाटर नमरंग का चलुआ सम्मान गारत ने स्वागत करे घर भित्र।